0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नेहा बेनीवाल आपके साथ रहेंगी। सुबह 7:05 पर गौतम गौर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 8:00 नेहा बेनीवाल आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और सुबह 9:00 गौतम गौर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं और साथ में कुछ पुराने गीत भी। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर, इसमें शालिका कपूर आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:05 पर संतोष राव आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें बॉलीवुड की जानकारी और गीतों का आप आनंद ले सकेंगे। दोपहर 12:05 पर शालिका कपूर आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे संतोष राव के साथ कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। दोपहर 2:00 मुनीश जौली आएंगे आपके लिए कार्यक्रम लेकर आशियाना। दोपहर 3:00 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें सीमा सती आपके साथ होंगी। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और आज का इसमें विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर विनय गोयल। शाम 4:00 मुनीश जौली आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम होता है। आज के इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे श्री ललित शाह, सेकंड इन कमांड। शाम 5:05 पर सीमा सती आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जिसमें दिल्ली शहर की जानकारियां आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ पसंदीदा गीत होंगे। और शाम 6:05 पर गीता चौधरी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम मसाला मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें श्रोताओं की पसंद के गीत आप सुन पाएंगे। शाम 7:05 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक हिट्स एंड मेमोरीज का, इसमें 1930 से 1932 के जो है आप इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट्स आप सुन पाएंगे। उत्कर्ष इसमें आपके साथ रहेंगे। रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें नॉनस्टॉप डांस हिट्स का मजा आप ले सकते हैं। गीता चौधरी इसमें आपके साथ रहेंगी। रात 9:00 कार्यक्रम रहेगा आपकी याद आती रही, इसमें ताहिर हसन आपके साथ रहेंगे। रात्रि 10:05 पर उत्कर्ष लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक ऑल दैट जैज। और रात्रि 11:05 पर आप सुन पाएंगे पसंदीदा गजलें रंगे महफिल में, जिसमें ताहिर हसन आपके साथ रहेंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका

0: साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत

0: चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल ओडिशा केरला माही टुडे US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
5: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
6: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
4: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor.

0: दूसरा लोग प्रोग्राम में आते हैं तो कुछ गाना को भी धुन के ज्यादा से नहीं निकलता है, और याद रहता है कि जिस श्रोताओं ने मेरा नाम लेता है श्रोताओं का नाम लेने की ही अच्छा लगता है, जिन जिन श्रोताओं ने मेरा नाम नहीं लेता है उन श्रोताओं का नाम लेने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ लोग नाराज भी हो जाता है ऐसे नाम नहीं लेने से।
1: ठीक है ठीक है, वो भी बात
0: है। कुछ लोग हमारे नाम को कोई ग्रुप का नाम नहीं लेता है तो उन लोग का नाम लेने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है ना।
1: हाँ तो हाँ तो हाँ, ये तो सही बात है,
0: सही बात।
1: थैंक यू।
0: इसलिए नाराज मत होना, हमारे दोस्तों भी नाराज मत होता है, किसी का नाम कभी भूल भी जाता है, और जो डेडिकेट कर जाता है उन लोग का नाम नहीं लेने से तो उस लोग भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सबका उन लोग का नाम लेना
1: जरूर। समझ गया मैंने, समझ गया। ओके थैंक यू। ओके अमल थैंक यू दे।
0: ओके ओके।
1: তো লিসনার্স কান ফার্স্ট কলার এই গানা মানি আছে ব্ল্যাকমেল ফিল্ম পরা এই গীত শুনব। এটা আপনাদের সোনু নিগম আর আলকা ইয়াগনিক লাগা অবস্থায়

0: हेलो
1: तो
0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार तनुश्री
1: जी सर मैं ग्रांग नोरे जिला सत्रह महाराष्ट्र से तनुश्री बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, अभी अभी आपका नाम लिया था कोई, आपको देरी किया था अमोल बसुमतारी।
1: जी जी जी, नई कॉल उनका लगा था, मैंने सुना था।
0: हाँ हाँ,
1: इसलिए मुझे दिल से ही चाहिए भगवान का नाम दे रही थी कि मेरा पल लग जाए, पर कभी भी लगा था पर क्या, और इनका जोर मैंने एक टीवी कर दिया।
0: ओके ओके, तो कैसे है तनुश्री?
1: सर आपसे बात हुई ना तो और भी अच्छे हो गए, और मुझे लगता है कि जिस होता हूँ की जिस होता हूँ नाराज होंगे और आपसे बात होंगे तो बहुत अच्छे होंगे।
0: ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आज कौन से गाना सुनना है आपको?
1: फिल्म का नाम है रंग दे बसंती।
0: रंग दे बसंती ना, ओके।

0: हाँ कौन से गाना सुनना है? रंग दे बसंती फिल्म से?
1: रूबरू
0: रूबारू। ओके, नरेश आयर और एआर रहमान का आवाज में है।
1: जी,
0: ठीक है,
1: और सर डेडिकेट आपको और
0: ओके।
1: हमारे सता और मेरे मित्र उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सर मेरे दोस्त दिखाई नहीं देते तो मुझे ज्यादा दोस्त नहीं है, और उन्होंने तू नहीं नाम मेरे लिए, तो उनको बहुत बहुत मैं उनका आभार मानती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लिया, तो अमोल बचारी उनको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: ओके, बाय बाय।
0: ओके, बाय बाय। ওয়েল লিসনার্স কানি এটা শুনব আপনাদেরকে নরেশ আয়ার আর এ আর রহমান লগা আওয়াজ আছে, ফিল্ম আছে রং দে বসন্তী।

0: हेलो
1: हेलो
0: रमेश पत्र
1: मौसम
0: इफिले बारिश हम निचना बरखुण आजिकल नर्थ इस्टे सब इन बरखुण तो भल हम अलग पिछले बेहतर गोलाघाट गरम
1: पानी
0: बरखुण दिले बेसि डांगर दे तो ना तो गाना शुन मन आज रमेश विजय पथ आज तो विजय पथ ना सागर संग किनारे हाँ कुमार शानू और अलका याग्निक लगा आसे तो
1: हाँ
0: गान बजाओ ओके
1: डेडिकेशन था कि वो अमल बसुमतारी विमल बसुमतारी भाईकन मुंडा
0: ओके
1: जोगेंद्र रंगपी सोनाली इंटीपी बीरेन हंसे सितारी रंगफार
0: ओके
1: चुपाके जमीर रुकुबेले मेथा दुर्गेश नागानपुरी
0: ओके
1: भगवान सिंह परमार रमेश प्रजापति राजेश पूरण वर्मा और उम्मीदा का सब लिस्ट है आपके और अपनी के भाई
0: ओके थैंक यू रमेश पत्र थैंक यू दे अपने कॉल कर दिया करने ना ओके
1: थैंक यू
0: वेल लिसनर्स कैन इतिया हुनी वो अपने लोग के कुमार शानू और अलका यक्निक लगा वास्ते फिल्म से विजय पाठ

0: हेलो। हाँ
1: हेलो नमस्कार,
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रैठी, जिला शिवहर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ रमेश जी, बताइए कैसा है आपका हाल।
1: बढ़िया
0: ओके, तो आज कौन से
1: जी, आप
0: फिल्म।
1: कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बहुत बढ़िया। मैं भी अच्छा ही हूँ। ओके, कौन से
1: जी,
0: गाना सुनना है आज। मूवी
1: फकीरा फिल्म है क्या?
0: फकीरा। फकीरा तो हाँ है, लेकिन पुराने वाला है ना क्या।
1: हाँ, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, वो पुराना वाला है। हाँ
0: पुराना वाला ना, तोता मैना, किशोर और लता का ना।
1: जी,
0: ओके, बजा देगा बजा देगा।
1: कुछ मित्रों को याद कर लो, भगवान
0: ओ फटाफट याद कर लीजिए।
1: से परमाना धर्मवीर है दिल्ली से, रोकन लोकन धर्मा है नाना केड़ी से, अस्तर जी है संगीता जी है, पूर्णमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, पूनम जी है कानपुर से, अमन बिमल जी है, अमल जी है, गोल्डी जी है, तो अमर सिंह है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे। जी
0: ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है,
1: ओके
0: धन्यवाद आपको। ओके
1: भाई साहब,
0: ओके, बाय बाय। वेल लिसनर्स, कहीं इतना होनी वो अपने लोग के किशोर कुमार और लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से फकीरा।

0: FM Dragon Band.
1: 103 MHz.
0: News, music, and entertainment.
1: This is FM Dragon Band.
0: FM 103 MHz.
2: Good afternoon, listeners. This is Akash Vanikoima, the news headlines. Prime Minister Narendra Modi is chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest-serving elected Prime Minister. Cabinet passes a resolution applauding the historical achievement. Culture Ministry announces Sangeet Natak Academy Fellowships, Awards and Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar. PM Modi's hometown Vatnagar in Gujarat to witness series of events celebrating 12 years of governance. Nagaland Chief Minister Nipi Rio condemns the horrific and inhuman killing of 6 innocent Nagas in Manipur. Government waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Major crackdown on illegal logging and timber smuggling in Tripura. External Affairs Ministry summons charge the affairs of the U.S. Jason Mix following attack on commercial vessel Sete Bilo off coast of Oman. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Nearly 13,000 crore rupees invested committed. Defence Ministry to purchase or procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses strategic partnership with Bulgarian Prime Minister Rumen Radev. Iran announces closure of Strait of Hormuz after fresh US military strikes. Canada introduces bill to restrict social media access for children under 16. Sri Lanka's public security minister says evidence links former SIS chief Suresh Saleh to 2019 Easter Sunday bombings. Japan restarts reactor at Kashiwazaki Kariwa nuclear plant amid global oil crisis. Iran carries out attacks against U.S. bases in Jordan and other targets in Gulf. U.S. responds with strikes on Iranian targets. Prime Minister Modi praises performance of Indian sportsperson and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And 2026 FIFA World Cup begins today across United States, Canada and Mexico. That is all we have in this news headlines.
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं, जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: FM Dragon Band
1: 103 MHz.
0: News, music and entertainment.
1: This is FM Dragon Band.
0: FM 103 MHz.
2: Welcome back, listeners. Itu Akash Vanikohima, FM Tragapan, 103 MHz per apanian program huni ase, aro huni takia program ase, live phone-in request program, that is Hindi. Well, call to aku ahi ase, tukane mwe apani hala call receive kuri ase. Hello.
5: Jai Mataji.
2: Jai Mataji.
5: Mera naam Puran Verma hai.
2: Haan, Puran ji.
5: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमेल भुगला जा करो
2: ओके
5: okay. फिल्म का नाम रहेगा एक तरफ घर वाली बाहर वाली
2: और बाहर घर वाली बाहर वाली ना
5: यस यस
2: देख रहा हूँ मैं. ओके, घर वाली बाहर वाली.
5: यस यस. इसके टाइटल सॉन्ग ये सर.
2: एक बार मैं एक बार तलाश कर लेगा.
5: जी जी.
2: हाँ, घर वाली बाहर वाली. कौन से?
5: जी, इसका टाइटल सॉन्ग ही है
2: घर वाली बाहर वाली.
5: हाँ, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली. दीपा नानी की आवाज है.
2: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली ना.
5: यस.
2: ओके, ठीक है, एक बजा देगा.
5: मिल गया?
2: हाँ, मिल गया मिल गया.
5: जी, सबसे पहले आप.
2: ओके
5: जी. और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है.
2: ओके.
5: गोल्डी भाई है, बिमल है, अमल है, रमेश पात्र है, और लाइव कॉलर आकाशवाणी कोई ना के चाहने वालों को. और सर ये कार्यक्रम आज 1 बजे तक रहेगा आपके साथ.
2: ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. ओके,
5: थैंक यू सर. आप 1 बजे तक चलाएंगे आज इस
2: कार्यक्रम में? रहेगा 1 बजे तक. ओके,
5: थैंक यू सर, धन्यवाद.
2: थैंक यू. वेल लिसनर्स का नीति होनी पॉपुलर के उदित नारायण और अनुराधा पट अनुराधा श्रीराम लगा वस्ते से फिल्म से घर वाली बाहर वाली.

0: हेलो।
1: जी सर जी नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, आपका वॉइस अच्छे से नहीं मिल रहा है। हेलो,

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर।
0: हाँ गुड आफ्टरनून।
1: मैं अभिजीत के से बोल रहा था।
0: ओ अभिजीत अजी अपनी लगा वस्तु इंजियस दे
1: आज
0: कोवी।
1: फास्ट टाइम, आज
0: हाँ
1: मेरे से अपना लगा,
0: फर्स्ट टाइम ना।
1: अपना लगा खाली।
0: अच्छा।
1: और फिल्म लगा नाम से फ्लाइंग जेट।
0: फ्लाइंग जेट। ए फ्लाइंग जेट ऐसे बोला ना। ए फ्लाइंग जेट ऐसे बोला। ए फ्लाइंग जेट हो वो।
1: वही टू ही।
0: होय होय फ्लाइंग जेट
1: और
0: नहीं ना। ए फ्लाइंग जेट ऐसे।
1: वही टू ही टाइगर शॉप लगा।
0: फ्लाई एफ एल वाई। हाँ कोई कौन तू गाना बजाओगा।
1: अलग गान नाम तो कोई भी अपना।
0: टाइटल सॉन्ग भी ऐसे टूटा जो कभी तेरा तारा। टूटा जो कभी तारा और खैर मांगदा भंगदा
1: और
0: पा बीट पे बूटी राज करेगा खलसा।
1: 3rd नंबर तो ये तो बजे दी। और
0: कौन तू बोला तू।
1: जो अपने 3rd नंबर 2 पीस ना।
0: खैर मांगदा।
1: हाँ हाई टी
0: ओके ठीक है से आतिफ असलम लगा वास लगा ना।
1: हाय।
0: ओके बजाई दी वो। ठीक है से थैंक यू अपनी कॉल कर
1: अरे
0: दिया करने।
1: थैंक यू। अरे डेडिकेटर से सब लिसनर और आपको भी थैंक
0: ओके थैंक यू ठीक है मैं बजा देगा
1: यू
0: तब
1: सर।
0: तो ना तो
1: थैंक यू,
0: होनी के ने एंजॉय करी दे।
1: थैंक यू सर।
0: ओके वेल लिसनर्स का नीचे होनी वो अपने लोग के आतिफ असलम और दिव्या कुमार लगा वास्ते फिल्म से ए फ्लाइंग जेट।

0: हेलो हेलो।
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: सर जी शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: ओके, आपका शुभ नाम?
1: शिवा लोहट सर।
0: और शिवा लोहट। ओके ओके।
1: जी
0: अच्छा
1: यस सर।
0: शिवा, समय भी जा रहा है, इसलिए कौन से फिल्म का सुनना है आज?
1: जी सर मूवी का नाम रहेगा हम आपके दिल में रहते हैं।
0: हम आपके दिल में रहते हैं ना?
1: जी सर।
0: ओके, कौन से गाना सुनना है आप?
1: इसका टाइटल ट्रैक सुना दीजिए सर।
0: ओके ठीक है सर, टाइटल ठीक है, टाइटल ट्रैक सुना देगा।
1: जी सर हमारे कुछ मित्र थे सर, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रमेश
0: ओके
1: प्रजापति जी हैं, और
0: ओके
1: बदरुआ से हमारे पुरुषोत्तम भैया हैं, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा सर ये। थैंक
0: ओके ओके धन्यवाद। ओके थैंक
1: यू सर।
0: यू थैंक यू। वेल लिसनर्स, कहाँ नीचे होनी वो अपने लोग की अनुराधा पटवाल और कुमार शानू लगा वास्ते फिल्म से हम आपके दिल में रहते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा

पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, गुरुवार से रविवार तक आप सुनते हैं 1 बजे से 2 बजे तक के प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला सॉन्ग मतलब जिसमें आप अपनी पसंद के गीत हमें भेजते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर आप हमें मैसेज करते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और अपनी फरमाइश भेज देते हैं और उन फरमाइशों को हम प्ले करते हैं विद द नाम। जी हाँ, आपके नाम के साथ। जैसे पहली पसंद हमने ली है किसकी? दिग्दर्शन और कविता गौड़ की मेरठ कैंट से, और इन्होंने कई गीतों की फरमाइश भेजी थी। फिलहाल फिल्म बेताब के इस प्यारे से गीत से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, दिग्दर्शन और कविता गौड़ की पसंद मेरा वाला सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी को याद कर रहे हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं गीतों के माध्यम से, तो आप हमें 9868107070 पर अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं। जैसे अब हम जो अगली फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं वो है कृष गुप्ता की, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और ये सोनू निगम की आवाज में गीत सुनना चाहते हैं, मुझे रात दिन।

जी हाँ दोस्तों, इन्हें सब कुछ पता है कि जिनसे ये मोहब्बत करते हैं वो भी इनसे बे इंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल, अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। बहरहाल, मेरा वाला प्रोग्राम में अब हर किरण सिंह फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, जो भेजा है इन्होंने। हम फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, ये कागज कलम दवात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं।
3: इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल।
2: जी हाँ, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है। किसने भेजी है? नंद किशोर, नंदू, रामू, परवीन, महाराजगंज, यूपी।

दोस्तों सावली सलोनी और खो गए हैं दिल किसका। जी हाँ, वर्षा खत्री का देहरादून से जो हमें संदेश लिखकर भेज रही हैं और गाना सुनना चाहती हैं आक्रमण फिल्म का ये मौसम माया है। वैसे आज मौसम है ना बड़ा हसीन है, बड़ा गजब का है। आज तो गीत सुनना चाहिए आज।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप अपनी फरमाइश हमें भेजते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और ये प्रोग्राम चलता है ठीक 2 बजे तक। और ये फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं, ये हमें भेजा है रंजीत ने मुकंदपुर दिल्ली से। फिल्म पापा कहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में क्या होता है, कौन सा जादू होता है, ये तो वही जानते हैं जो प्यार करते हैं, और जो प्यार नहीं करना जानते वो तो सिर्फ बहाना बनाते हैं, जी हाँ, या किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल जिस गीत का हम प्ले करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है निजाम अंसारी ने अमरावती महाराष्ट्र से, और ये सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का क्या मौसम आया है। वैसे आज का दिल्ली में भी मौसम बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है, वैसे तो हर जगह का मौसम बेहद सुहाना है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें हम आपकी पसंद के गीत प्ले करते हैं। 9868107070 पर आप हमें संदेश भेजते हैं, और जिस गीत की अब हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं वो गीत है फिल्म दिल का मुझे नींद ना आए, सत्येंद्र सिंह, ग्राम भिलोली, जिला कासगंज से।

दोस्तों अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, तो हम हैं आपके एसआर। जी हाँ, एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, और ये फरमाइश हमें भेजी है कृष्ण कुमार मिश्र ने दिल्ली से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और ये गीत विजय पथ से आपके लिए आ रहा है। राह में उनसे मुलाकात हो गई कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, और ये गीत है कि फरमाइश हमें भेजिए सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से।

जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसान सोचता है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कई बार होता है ना कि हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं। वैसे हमारे लिसनर्स हैं जिनको हम खुश नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें नाराजगी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि कम से कम हमारा नाम ले लो, गीत नहीं बजा रहे हो, प्ले नहीं कर रहे हो, तो आप हमारा नाम ले लो। बहरहाल होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम घोरवाल की पसंद का ये गीत है, और हम सभी उन लिसनर से यही कहना चाहेंगे जो नाराज हो गए हैं।

और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस गीत की फरमाइश सुनकर बहुत से जो लिसनर हमसे नाराज थे वो अब नाराज नहीं रहेंगे, बल्कि उनका मन भी डोला रे डोला करने लगेगा। जैसे रिंकू कुमार उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से ये गाना सुनना चाहते हैं, देवदास

दोस्तों मुनि जा चुके हैं स्टूडियो में लेकर आशियाना, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। बहरहाल ये आखिरी गीत का आनंद लेते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरा वाला सॉन्ग। इसी के साथ आपके दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

तो आशियाना प्रोग्राम शुरू हो रहा है अब, और जानते हैं ना हर बृहस्पतिवार दोपहर के जब 2 बजते हैं तो आशियाना आपके बीच आता है, लेकिन हर बृहस्पतिवार का खास होता है आशियाना, क्योंकि हम ये वाला जो सेगमेंट है ये डेडिकेट करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन को। तो आज इस आशियाना में मैं शुरुआत कर रहा हूं एक कहानी के साथ। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, और ये एक कहानी है राजू और बीर दादा की। बीर दादा जो अपाहिज हैं, और बीर दादा लगभग 70 साल के हैं, राजू 13 साल का लड़का है, लेकिन बीर दादा को बहुत प्यार करता है, हमारे ही इसी समाज में रहता है। और राजू और बीर दादा की दोस्ती पर आशियाना का ये शुरुआती अंश आपके लिए।

तो आशियाना सुन रहे हैं आप, और बृहस्पतिवार का आशियाना हम डेडिकेट करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन पर। यहां मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जहां पे वीर दादा हैं जो 70 वर्षीय हैं और राजू है जो 13 साल का लड़का है। वीर दादा के आगे पीछे कोई नहीं है, और दिल्ली आते हैं वीर दादा कि शायद दिल्ली में कोई सहारा उन्हें मिल जाएगा। व्हीलचेयर पे बैठे हैं, अपाहिज हैं और सर पर छत नहीं है, तो इसलिए दिल्ली की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस गर्मी में फ्लाईओवर के नीचे ही उनकी गुजर बसर होती है। और वहां आके वो रुक गए, बस गए, और उसी फ्लाईओवर के नीचे 13 वर्षीय राजू उनको मिलता है। शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता इन दोनों का है, जहां राजू वीर दादा को देखकर वीर दादा से उठने के लिए कहता है। वीर दादा अपनी अपाहिज होने की बात उसको बताते हैं और कहते हैं कि वो अभी कभी उठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। राजू उनसे पूछता है कि फिर आप खाना कैसे खाओगे। वीर दादा कहते हैं कि मेरा एक हाथ थोड़ा थोड़ा चलता है, धीरे धीरे खा लूंगा। राजू वीर दादा से पूछता है कि अब आप नहाओगे कैसे, मुंह कैसे धोगे। तो वीर दादा उसे कहते हैं कि परमात्मा है, वो संभाल लेगा। दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे बैठे वीर दादा 70 वर्षीय भगवान के सहारे उस फ्लाईओवर के नीचे आ तो गए, उस व्हीलचेयर पे जिसकी खुशकिस्मती से दोनों टायर सही सलामत है। राजू वीर दादा को देख के भावुक होता है और फिर सोचता है कि जब तक मेरे हाथ पैर जल रहे हैं, मैं वीर दादा को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, उनके कपड़े बदल दिया करूंगा और उन्हें इस गर्मी में नहला भी दिया करूंगा। ये विचार लेके राजू वीर दादा के पास जाता है और उन्हें आश्वासन दिलाता है कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। वीर दादा ध्यान से जब राजू को देखते हैं तो देखते हैं कि राजू की एक आंख खराब है, जो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है। वीर दादा राजू से कहते हैं, मैं हूं तो वृद्ध, लेकिन इस अवस्था में भी जो भी सबसे अच्छा आशीर्वाद अगर मैं परमात्मा से मांगूंगा ना, वो तुम्हारे लिए। तुम एक आंख से देख नहीं सकते। राजू कहता है, बचपन से ही ऐसा है। वीर दादा परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली की इस भागती दौड़ती जिंदगी में फ्लाईओवर के नीचे बैठे वीर दादा को कोई ना कोई तो मिल गया जो उन्हें खाना खिलाएगा अपने हाथ से। राजू ट्रैफिक के सिग्नल में कुछ चीजें बेचता है, कुछ पैसे आते हैं, कोई भला मानस आके उसे खाना दे जाता है तो वो वीर दादा के लिए भी खाना मांगता है। एकाएक नीले रंग की एक गाड़ी रुकती है, राजू से उसकी आंखों के बारे में पूछती है। राजू कहता है, मेरी आंखों के बारे में आप चिंता ना करें, मेरे वीर दादा के लिए कुछ खाना दे दें घर का। नीली गाड़ी से एक लेडी उसे खाना देती है और राजू भागे भागे वीर दादा के पास जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये सिलसिला पहले दिन शुरू होता है और अगले दिन भी चलता है। दिल्ली की इस गर्म तपती धरती पर राजू अपने वीर दादा के लिए कुछ ना कुछ जुटा ही लेता है। कभी ठंडी पानी की बोतल, कभी वो मैंगो ड्रिंक जो उसे मिल रहा था। वो जाता है सीधा वीर दादा के पास और हां, जब पासी की सिविल सप्लाई से पाइप में पानी आता है तो बाल्टी में भरकर वीर दादा को नहला भी देता है। ट्रैफिक सिग्नल से एक जोड़ी कपड़े भी मिल गए, यानी वीर दादा के लिए अब दूसरी पोशाक भी तैयार हो गई।
इस नई पीढ़ी को कुछ लोग जो कोसते हैं, इस नई पीढ़ी में भी नारायण किस रूप में आ जाते हैं, किस जगह आ जाते हैं, दिल्ली की तपती धूप में नंगे पैर चलते हुए अपना रूप दिखाते हैं।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आशियाना सुन रहे हैं आप और आशियाना चलेगा 2:30 तक दोपहर में। अभी उसके बाद एक प्रायोजित कार्यक्रम आएगा आपके बीच में, एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और मैं इस खास अंश में बृहस्पतिवार का ये सेगमेंट हम डेडिकेट करते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स पर। तो आज मैंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा भाषण दिया जाए कि सीनियर सिटीजन्स के प्रति हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पता सबको होता है, फर्क यह है कि कोई करता है कोई नहीं करता। पता सबको होता है किसको इज्जत देनी है किसको कितना सम्मान देना है, पता सबको होता है। कोई करता है कोई नहीं करता है। सब लोग बहुत बिजी हैं, क्या करें, बहुत बिजी हैं। मुझे नहीं लगता कि एक नव निर्माण अगर भारत का हो रहा है तो वहां हम अपने सीनियर सिटीजन्स को पीछे छोड़ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस उनके पास है, जो दम खम उनके पास है, उनके विचारों में, वो शायद शरीर के बल से कहीं अधिक है। इसीलिए बीर दादा और राजू की ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। बीर दादा जो

वर्षीय हैं और दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे 24 घंटे बिताते हैं, वहीं रहते हैं, व्हीलचेयर पर बैठे हैं। और ये मेरी आंखों देखी कहानी है, ये फिक्शन नहीं है। राजू 13 साल का बच्चा जिसकी एक आंख खराब है, वो बीड़ा उठाता है कि बीर दादा को उनकी देखरेख करेगा, अपने हाथ से खिलाएगा, अपने हाथ से नहलाएगा। यहां हमने सीनियर सिटीजन्स को लुक आफ्टर करने के लिए किसी डिग्री की बात नहीं की, हम यहां बात कर रहे हैं इंसानियत की, जिसकी जरूरत है हर एक शख्स को जब तक वो जीवित है। तो पीछे इस कहानी में जो बातें हमने की, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राजू वीर दादा के लिए कपड़े जुटाता है, खाना जो मिलता है वो खिलाता है, वीर दादा जो मांगते हैं वो देता है, लाकर देता है। और ये गीत मैंने चलाया था कि न जाने किस भेस में नारायण मिल जाएगा, नारायण किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। शायद उस बेसहारा अपाहिज 70 वर्षीय वीर दादा के लिए भी, जो ना अपने हाथ से खा पाते हैं ना पी पाते हैं, राजू की तरह न जाने कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद एक मेडिकल हेल्प दे रहे हैं घरों में। हम उन्हें कभी कभी सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में देखते हैं, लेकिन सोचिए कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स, उनकी देखरेख करने वाले नारायण के ही रूप है ना। वीर दादा बीमार थे और एक दिन वो परलोक से धार गए। वीर दादा की अंतिम संस्कार का बीड़ा राजू ने उठाया, 13 वर्षीय राजू ने। वीर दादा के नाम पर जो स्मृति है, वही जगह है, वही मिट्टी की जगह जहां पे वीर दादा की व्हीलचेयर रहा करती थी। 3 लोग उठा के वीर दादा को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। राजू बहुत भावुक होके कई दिनों तक रोते रहता है। उस फ्लाईओवर के नीचे राजू भी अपनी दिनचर्या बिताता था। ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ियां रुकती थी और राजू से कहती थी, स्कूल क्यों नहीं जाते, भीख क्यों मांगते हो। राजू मांगता नहीं था, देने वाला था। दिन गुजरते गए, वीर या दादा की याद जो थी वो भी मिटती गई। राजू सिर्फ अकेला उस वीर दादा को याद करता है, और जब भी वीर दादा की याद आती है तो वो रो पड़ता है। आपके और हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो सिर्फ आपका समय मांगते हैं। शायद आपके दादा दादी जिन्होंने आपको अपनी गोद में बिठा के खिलाया, आज आपके पास 5 मिनट नहीं है उनके पास बैठने के लिए, उनका हाल पूछने के लिए इतना भी समय नहीं कि आप पूछ पाएं दादा कैसे हो। ये भी हो सकता है कि आप उस श्रेणी में हो जहां आप दिन रात अपने दादा दादी की, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आशियाना सुन रहे हैं आप, क्यों ना एक ऐसा आशियाना बनाए जहां खुशी से पहले किसी का दुख बांट लें, यही कोशिश कर रहे हैं हम आकाशवाणी रेनबो पर। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कुछ अलग हैं।

सफर चलता रहता है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 21 जून को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, आपकी चेतना को, आपकी सही सोच को जागृत करना भी योग है। योग लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि हमारा आजकल मोबाइल पे मिलता हुआ एयर टाइम, अनलिमिटेड अगर एक सकारात्मक सोच हो जाए तो सोचिए क्या होगा। और वैसी ही सोच को जागृत करता है कपालभाति प्राणायाम, एक बहुत ही स्ट्रांग योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है ये। कपालभाति क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है, लेकिन कपाल हमारा मस्तिष्क और भाति यानी चमकना। तो अगर योग में वो पावर है कि कपाल भाती करके आप की चेतना जाग जाए, आपके विचार अच्छे हो जाएं, तो योग से आप जुड़िए। क्योंकि कभी कभी एक नकारात्मक सोच हजारों सकारात्मक सोच को रोक कर रखती है। कपाल भाती में वो ताकत है कि वो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लेकर आ सकती है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
3: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
3: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
3: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
3: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
2: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
2: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे।

5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माता जी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से

0: अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: कोयल सी तेरी बोली।
5: This is Akashvani Kohima, FM Dragoban at 103 MHz. We now begin our second transmission.
6: FM Dragoban
7: 103 MHz.
6: News, music and entertainment.
7: This is FM Dragoban.
6: FM 103 MHz.
5: Good afternoon, my dear listeners. Once again, welcome back to Akashvani Kohima, FM Dragoban at 103 MHz. Well, before we begin our second transmission, here's a quick rundown on our program highlights for this evening. In a short while from now, we have Western Music SMS request. At 4, we have Local Artist program. And at 4:30, we bring to you Rural Connect program, which will be followed by Local Artist program at 4:50.

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: हमारे पास बजी वालों की आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रागोपैन पर आ कोहिमा टाउन लगा लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट इनका अनिदियस से मंगला प्रालुई की ना पीएचक्यू जंक्शन इतिया नॉर्थ आरु साउथ द्विताते भी हल्का ट्रैफिक से पीएचक्यू जंक्शन प्रालुई की ना मेजर जंक्शन ते इतिया नॉर्थ बाउंड ते लाइट ट्रैफिक माने हल्का से किंतु साउथ बाउंड ते भारी ट्रैफिक से दूसरा रास्ता होले पैरामेडिकल टी मॉडल और आईजी रास्ता नहले बा टी लेडीज माइल रोड टीसीपी राजू पॉइंट इतिया साइले नॉर्थ बाउंड ते मॉडरेट ट्रैफिक से अकु साउथ बाउंड होले भारी ट्रैफिक से अल्टरनेट रूट होले बॉक्स कटिंग परा एनएचए के सेंसस पॉइंट नहले बा फुलबारी खोचीजे ग्राउंड परा राजू पॉइंट पर लुकिना सेंसस पॉइंट इतिया नॉर्थ बाउंड ते मॉडरेट ट्रैफिक से किंतु साउथ बाउंड ते हेवी ट्रैफिक भारी ट्रैफिक से दूसरा रास्ता होले सेंसस पॉइंट आरो एनएचए के रास्ता हाई स्कूल जंक्शन पर लुकिना सेंसस पॉइंट इतिया नॉर्थ बाउंड ते हल्का ट्रैफिक से किंतु साउथ बाउंड ते मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई दिए से दूसरा रास्ता होले बिलीग्राहम रोड टू डीबीएस नहले बा High School Junction para T Model Road. Akrite ita NHK Junction para Census Point. North bound aru south bound duitabi ita kane halka traffic ase. Eju takishe aji homoe. 3 baji para loikina. 5 baji talk laga traffic update. Honi takibi FM Tragoban Kalipujur 10 baji para aku loikina hibo. Amikhan laga traffic update. Sop manuke aku ekbar janai di ase. ট্রাফিক রুলস তো ভাল করে চলাবি আকু আপনার যদি টু হুইলার্স যদি আপনার স্কুটার খান বাইক খান চলা আসুকলে জি হলিবি আপনার

का दिए हुए ताबी जमाते हैं। वेल दुर्गे जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही गहरा मैसेज लिखा है आपने, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी शायरी भेजने के लिए। वेल वी ऑल्सो हैव नमिदी बॉय एंड नमिदी गर्ल, गुड इवनिंग आर जे वी, बिग सलाम कैसे नमिदी बॉय एंड गर्ल, बिग सलाम टू यू टू गाइज, हैव फन एंड येस वी ऑल्सो हैव सूर रेडियो लिसनर्स ग्रुप ट्यूनिंग इन दिस इवनिंग, सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू Cecilia by S. of Bass. I hope you guys have a lot of fun.

six, eight, zero, five, three, three, three. Yes, दोस्तों, 9 4 3 6 मतलब 9 4 3 6 8 0 5 3 3 3. इस पर अपना मैसेजेस भेज दीजिए और सुनिए अपना पसंदीदा गीत FM ट्रगोवन पर ही. वेल, आई एम गिविंग यू द लास्ट ट्रैक. दिस इज मम्मा मिया. आई विल सी यू वेरी सून एट 7:30 विथ योर फोन लाइव इन प्रोग्राम. सो यस, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड. एंड

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: Hello? Hello? Hello?
1: हेलो
0: Ah, yes, hello. कौन कौन से?
1: हेलो
0: Yes, hello. Hello?
1: हेलो हेलो
0: Hello?
1: हेलो
0: Hello, आपको सुनाई दे रहा है?
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ अच्छा से सुनाई दे रहा है? हाँ थोड़ा क्रैक, थोड़ा डिस्टरबेंस है सर। अच्छा दुर्गेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, खूबी खबर की निकास से। हाँ जी हेलो हेलो, यस दुर्गेश जी, आई एम सो सॉरी, आई माइट हैव लॉस्ट हिम बिकॉज द नेटवर्क वाज नॉट सो गुड। सो एनीवेज एनीवेज वील गो अहेड एंड लिसन टू अनदर ट्रैक। दिस इज द वे यू मेक मी फील एज वी वेट फॉर मोर कॉल्स। ऑल राइट।

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi.
0: Welcome to Akashvani.
1: दीदी नमस्कार, मैं दुर्गेश नागनपुरे बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी जी, दुर्गेश नागनपुरे जी, पहले भी आपसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा खराब था शायद।
1: जी फोन भी वो बाद में हो पाई ना।
0: हाँ, आपका थोड़ा डिस्टरबेंस था तो लाइन कट गया, लेकिन बताइए आप कैसे हो, आप कहाँ से शायरी इतने सारे शायरी लिखते हो?
1: दीदी मोबाइल से लिखता हूँ, गूगल से।
0: बहुत अच्छे। आज पहली बार बात हो रहा है ना हम दोनों की?
1: जी जी, पहली बार ही बात हो रही है। वो आप तो बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते हैं हम लोग।
1: जी जी,
0: थोड़ा बहुत सीखा है।
1: जी आप नए आरजे हो एफएम ट्रेगो पेन पे?
0: जी जी, मैं नई हूँ।
1: पहले आरजे अथिंग मुंडी थे।
0: हाँ हाँ,
1: तो वो शायद आप नहीं आते।
0: हाँ, वो छोड़ चुके हैं शायद अभी।
1: जी
0: हाँ,
1: वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे।
0: जी जी, और आपका जी, आपका वंदना जी कैसी है?
1: ठीक है दीदी, अभी खाना बनाया।
0: अच्छी बात है।
1: और आपका प्रोग्राम डीटीएच पर हम डेली सुनते हैं।
0: हाँ, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आज
1: का।
0: हाँ,
1: उसका एक फोटो भी हमारे घर में लगा हुआ है।
0: सच में?

0: और मैं भी पेंटिंग थोड़ी बहुत बना लेता हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ पे लिखता हूँ और रंगों से अच्छा सजा के रखता हूँ।
1: अच्छा अच्छा काश आपसे मुलाकात हो पाती दुर्गेश जी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगते हो हमें।
0: दीदी देखता हूँ कभी टाइम मिलेगा तो एक बार तो जरूर आऊंगा कोई ना।
1: हाँ हाँ घूमने जरूर आइएगा
0: जी, आकाशवाणी भी आऊंगा।
1: जी जी बिल्कुल आइएगा, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके लिए तो हमेशा हमारा FM परिवार का दरवाजा तो हमेशा खुला ही है। अपना परिवार के लोग हैं आप। और बताइए आप आज कौन से गीत सुनना पसंद करेंगे
0: दीदी? आज सेलिना गोमेज का आप कोई सा भी गाना सुनवा दीजिए।
1: सेलिना गोमेज का
0: जी।
1: अच्छा आपको सेलिना अच्छा लगता है?
0: जी।
1: सिंगर? नहीं कोई बात नहीं, शर्मा शर्माइए मत। इसमें शर्माने की क्या जरूरत है, बताइए कोई बात नहीं। और आप घर? अच्छा अच्छा ठीक है दुर्गेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, आज वार्तालाप भी हो गया, आज तो आपका आवाज भी सुनाई दे रहा है मुझे।
0: और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ।
1: जी जी
0: कि मेरा गांव जो है ना जसवाड़ी,
1: हाँ जी,
0: तो मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर खंडवा सिटी है, जहाँ पर किशोर कुमार जो गायक कलाकार है ना,
1: हाँ जी,
0: सिंगर किशोर कुमार, उनका बर्थ प्लेस है खंडवा।
1: अच्छा।
0: और 4 अगस्त को उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है खंडवा में, और कराओके सॉन्ग भी मतलब गाते उनकी समाधि है खंडवा में। और हमारे गांव में ओमकारेश्वर मंदिर है, और सुक्ता रिवर है, और फिल्टर प्लांट है।
1: अच्छा।
0: पानी फिल्टर होके खंडवा जाता है।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ही प्यारा जगह में रह रहे हो आप, बहुत ही खुश नसीब हो आप, ईश्वर की कृपा है ना, ऐसे ही खुश रहिए। और यस जाके आपके गाने को सुन लेते हैं, लेकिन आपको किसी को डेडिकेट करना है इस गाना को? ठीक है ठीक है, चलो जी दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। राइट माय डियर लिसनर्स, दुर्गेश नागिनपुरे ही सेलिना गोमेज लगा गाना हुनिबो खोइकेना तार लगा लिसनिंग प्लेजर गाने कोई दिशे, तो लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू सेलिना गोमेज, दिस इज लव यू लाइक अ लव सॉन्ग।

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi.
0: Welcome
1: to... Namaskar.
0: Namaskar, namaskar. जी.
1: निमाड़ी भाई बोल रहा हूँ ग्राम जसवारी से.
0: नाम बताइए अपना एक बार फिर से प्लीज.
1: नमीदा बॉय.
0: ओ नमीदी बॉय एंड गर्ल. पता चल गया मैं कौन बोल रहा है. नमीदी बॉय जी कैसे हो?
1: ठीक है जी.
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: अब मैं भी बढ़िया हूँ. मैं तो हमेशा बढ़िया रहती हूँ आप लोगों की कृपा से. और बताइए कौन सा गीत सुनाऊँ मैं?
1: ठीक है अभी हम तो बैठे हैं छत पे घर की.
0: अच्छा बहुत गर्मी है क्या वहाँ पे?
1: ठंडी हवाएं चल रही है. दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है.
0: वही तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना इस साल? बहुत ज्यादा है.
1: तो 40 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान रहता है.
0: हाय कैसे रहते हो आप लोग?
1: बहुत गर्मी तो घर से भी पैर ऐसे जलने लग जाते हैं.
0: ऐसा हो रहा यहाँ पे तो? हम तो 20 के ऊपर जब भी चले जाते हैं मैं तो सह नहीं पाती हूँ. वहाँ पे आप लोग कैसे रहते हो वो आप लोग ही जाने.
1: जी अभी भी छत पे भी ठंडा पानी डालना पड़ता है और घर के आंगन में भी थोड़ा पानी छीटना पड़ता है तो उससे थोड़ा ठंडा होता है वातावरण.
0: जी जी नमीदी भाई जी एक सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगी क्योंकि आजकल बहुत गर्मी भी ज्यादा है. अपना यू नो पानी ज्यादा पीना. लेकिन अगर आप हो सके आपका तो छत भी है वहाँ पर बिना मेरे बताए हुए आप तो करते होंगे. लेकिन वो जो पशु पक्षियाँ होते हैं उनके तो कोई भी नहीं होते. आप छत पर पानी तो रखते होंगे उनके लिए है ना?
1: जी दीदी मैं डेली मेरे वो अपने राइस मतलब चावल जिसे बोलते हैं ना अपन.
0: हाँ जी हाँ
1: चावल
0: जी.
1: की बारीक चूरी आती है मतलब छोटे छोटे वो उसके दाने तो वो भी मैं थोड़ा छिड़क देता हूँ छत पे भी और घर के आंगन में और एक कटोरे में रोज पानी भर के रखता हूँ उनको पक्षियों के लिए चिड़ियों के लिए.
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद. ये तो हम सभी का जो जो भी हमें अभी सुन रहे हैं वो सब भी ऐसा करें.
1: और जहाँ कहीं मेरे छत पे छोटे छोटे मतलब पौधे हैं गमले हैं और उनमें रोज और ऐसे मतलब फूल के वो उसमें पौधे हैं.
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा.
1: उनको भी डेली पानी देता हूँ और अपने फैमिली का भी ध्यान रखता हूँ.
0: बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो. और यस वक्त तो बीता जा रहा है अभी मेरे पास बहुत ही वक्त कम बचा है. बातें तो करते रहेंगे मिलते रहेंगे लेकिन अभी बताइए आपको कौन सा गीत सुनाओ अभी?
1: बोनी एम एनी सॉन्ग.
0: बोनी एम
1: जी.
0: अच्छा आप इंग्लिश गानों का भी शौकीन है?
1: जी इंग्लिश तो अब ये FM ट्रेगोपेन पे वेस्टर्न म्यूजिक में सुन सुन के
0: हाँ जी.
1: उसका भी शौक लग गया क्योंकि बहुत अच्छे गाने होते हैं. हाँ सुनने में मजा आता है.
0: अच्छा अच्छा तो मैं एक गाना जो मुझे पसंद है मैं वो बजा दूँ बोनी एम का?
1: जी बजा दीजिए डांस करेंगे हम तो.
0: ठीक है अभी गर्मी भी है लेकिन अभी छत पे तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है तो थोड़ा नाच लीजिए फिर है ना. चलो अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: आप मेरा SMS शामिल करते रहिए.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं करती रहूंगी. चलो अपना ख्याल रखिए. थैंक यू गुड नाइट.
1: थैंक यू.
0: वेल माय डियर लिसनर्स नमीदी बॉय और नमीदी गर्ल लगा साइट पर बोनी एम लगा गाना खुशी एकता बजाय देवी को आसे. तो लेट्स गो एंड लिसन टू हुरे हुरे इट्स अ हॉलीडे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं।

0: से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री

0: गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत

और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स। अब निकन सभी ट्यून इन क्रिकना से आकाशवाणी को हिमाय एफएम ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज ते अपनी खेलने का होस्ट और दोस्त आर्जितम जन लोग दें प्रोग्राम दे अपनी खान सबके स्वागत करे जे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एज द डे स्लोली वाइंड्स डाउन एंड द नाइट सेटल्स इन, इट्स टाइम टू रिविजिट the golden era of Hindi cinema through melodies that have stood the test of time. My dear friends, apni kan sob ki purani filmi geet laga ekta special half an hour dedicated to evergreen songs. Kundu pra ami kan gei itiyara ami khala mon dak touch kore diye se across generations. Apni kan sob ke itu program dei swagat kore ase. These classics are not just songs, they are memories woven in beautiful lyrics, unforgettable voices and timeless compositions. So my dear friends, sit back, relax and let the magic of vintage Bollywood accompany you through the night. Ami khane poila geet jete huni hobo. Poila geet ani diyeche Ye Sham Mastani, Kati Patang laga film ra Kishore Kumar avaste, music dise Adi Parmat, lyrics Anand Bakshi. Ekta timeless evening melodies of Bollywood history. Huni kina enjoy group.

0: Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए.
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं. इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती. समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है. साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है. जनगणना 2027 को सफल बनाए.